आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

जानते हैं कभी आभार शब्द कितना भारी हुआ करता था? जमाना हुआ जब हम दूसरों को थैंक यू कहने के लिए कार्ड भेजा करते थे और उन्हें खरीदने के लिए दुकान पर उन्हें खंगालने में घंटों बिताया करते थे। मन के भाव को व्यक्त करने वाला एकदम सटीक संदेश की तलाश में जाने कितने कार्ड उलट पुलट कर डालते थे। अब इंटरनेट भरा पड़ा है ग्रेटिट्यूड पर टनों सामग्री से, बट कितना वक्त लगाते हैं हम दूसरों को शुक्रिया जताने वाले संदेश चुनने में? आखिरी दफा कब किसे तहे दिल से शुक्रिया कहा था, लिखकर मन का भाव जताया था, फोन उठाकर भावनाओं में लिपटा हुआ शुक्रिया कहा था, या निजी मुलाकात के वक्त आंखों में आंखें डालकर दिल से धन्यवाद कहा था? कभी सोचा है अपनी हिंदी भाषा में ही इस एक एहसास के लिए आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता जैसे कई कई शब्दों को क्यों रचा गया होगा? मत सोचो कि कोई लॉटरी लगेगी, कोई अपनी वसीयत का वारिस आपको बना जाएगा, या कोई भारी भरकम एहसान आप पर करेगा तभी आपके मुंह से आभार शब्द फूटेगा। जिंदगी की हर छोटी बड़ी नेमत, जैसे बारिश की बूंदों के गिरने पर, जैसे सवेरे आंख खुलने पर, ऑफिस की दौड़ में समय पर बस मेट्रो मिल जाने पर, उस बस या ट्रेन में सीट मिल जाने पर, तसल्ली से लंच करने की फुर्सत के बदले, बॉस द्वारा आपकी नई शर्ट की तारीफ पर, हेयर ड्रेसर ने आपके बालों को जो शेड दिया या जो कट दिया उस पर, नई कार में आपको बिठाकर मंजिल तक छोड़ने आने वाले उबर ओला ड्राइवर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन की आदत अब तक नहीं बनी है, तो अब समय है इस भूल को सुधारने का, क्योंकि ये शुक्रिया अदा करने की आदत है ना, ग्रेटिट्यूड का भाव है, दूसरों के द्वारा किए एहसान का एहसास है, वो वाकई बहुत कीमती होता है, दौलत और उससे खरीदी जा सकने वाली तमाम चीजों से भी ज्यादा खुशी देता है आभार का दिली एहसास। कितने ही मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि आभार व्यक्त करने से दूसरों को खुशी मिले या न मिले, आपकी खुशी जरूर बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल भी ऊंचा उठ जाता है, आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, जो आपको फिजूल की चिंताओं, ईर्ष्याओं, राग द्वेष से दूर रखता है, आप अच्छा सोते हैं, अपनी निगाहों में आपकी कद्र बढ़ जाती है। अरे भाई, जब एक कृतज्ञता ज्ञापन से इतने फायदे हैं तो इससे परहेज कैसा? क्यों मुश्किल लगता है वह छोटा सा शब्द बोलना जो आपको दूसरों की निगाहों में उठा दे? थैंक्सगिविंग साल में सिर्फ एक दिन मनाया जाने वाला त्योहार क्यों बनकर रह गया है? हर दिन को थैंक्सगिविंग में क्यों नहीं बदला जा सकता? मन्नत के धागों से तो हम सब वाकिफ हैं, अक्सर उन्हें खोलने भी जाते हैं, कभी मंदिरों की चौखटों पर तो किसी दरगाह या मजार पर जाना किसी तीर्थ से कम नहीं माना जाता, तो फिर जिंदगी के छोटी छोटी खुशियों के लिए, छिटपुट वाक्यों के लिए, जरा जरा से सुकूनों के लिए, हल्की फुल्की सहूलियतों के लिए शुक्रिया कहने में भला क्यों चूक जाते हैं? आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए। इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है, इसी शक्ति के शरण में आए। सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

चलिए आज बात करते हैं उन अंगूरों की जो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, पहुंच से बाहर कोई चीज होने पर ये मुहावरा अक्सर बोला जाता है ना। लोमड़ी अंगूरों के गुच्छे को छलांग लगाकर तोड़ने की कोशिश करती है, सफल नहीं होने पर यह कहकर आगे बढ़ जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। कहानी खत्म। हम सुनते हैं, लोमड़ी पर हंसते हैं, कहानी हमेशा से सुनाई भी इसी ढंग से जाती है। पर क्या ये महज लोमड़ी की खिसियाहट या कमजोरी है? हम सब कभी ना कभी अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहते हैं और अपने मन को हमें समझाना भी पड़ता है ना। अपने मन को समझाकर आगे बढ़ जाना गलत नहीं होता, अपने मन को समझा सकना छोटी बात भी नहीं होती भाई। कई दफा जो है उसे मान लेना ही आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। फिर यह जरूरी नहीं कि अंगूर हमेशा खट्टे ही रहेंगे। असल जिंदगी में कहानी हमेशा यहीं खत्म नहीं हो जाती। कई बार हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, खुद पर काम करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। कई बार हमारा लक्ष्य गलत भी होता है, तब लाख कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती। हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एक ही बात पर खुद को अटकाए रहते हैं। दरअसल संतुष्ट होने पर ही यह समझ में आता है कि जो हम हैं या जो हमारे पास है उसके क्या मायने हैं। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा और हो जाएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो आज है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे उसका दुगना भी हो जाएगा ना, तो भी संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि बड़ा सोचने और उसे हासिल करने से नहीं रुकती। दिक्कत तब होती है जब हम किसी से होड़ करते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसी दौड़ में हम खुद के साथ सख्ती करने लगते हैं, सामान्य जीवन जीना भूल जाते हैं। फिर कुछ पाने की चाह होना बुरा तो नहीं है, पर वह नहीं मिलने पर निराशा में डूब जाना देखिए गलत है। दूसरों से कम या ज्यादा होने का भाव मन को टिकने नहीं देता। जब कोई अभाव महसूस नहीं होता तब पूरी दुनिया अपनी लगती है। पहले हम खुद को स्वीकारते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया हमें स्वीकारती है। जब हम ज्यादातर टाइम उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे मूल्यों से मेल खाती है, तो हम किसी भी उठापटक का सामना बेहतरी से कर पाते हैं। दया, करुणा, ईमानदारी, अच्छे रिश्ते, सेहत, पैसा, नाम, कुछ भी हमारे मूल्य देखिए हो सकते हैं। जितना हम अपने मूल्यों के करीब जिंदगी जीते हैं उतना ही अपनी कोशिशों से संतुष्ट हो पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। जितना हम सोचते हैं हमारी जरूरतें उससे देखा जाए तो बहुत कम है। फिर संतुष्टि मजबूरी या मन महसूस कर रहना ठीक नहीं है, यह मजबूती का भाव है। संतुष्टि के साथ ही हम सही मायनों में इवॉल्व होते हैं। जो है ठीक है और जो होगा देखा जाएगा, यह मजबूत मन ही कह सकता है। संतुष्ट रहने वाले आत्मविश्वास को अपना दोस्त मानते हैं और संतुष्टि को सबसे बड़ा खजाना। इसलिए दोस्तों संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, हर समय ऊपर वाले और प्रकृति को शुक्रिया कहना बेहद जरूरी है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

सोच को कैसे बनाएं लचीला। खुले दिमाग के साथ आए दिन की चुनौतियों, फसावट और नफे नुकसान से तालमेल बनाना आसान हो जाता है। मन का एक ही ढर्रे पर दौड़ते रहना हमें कहीं पहुंचाता भी नहीं है और थका भी देता है। मन जब ढलना नहीं जानता तब हम ढहने लगते हैं। हम सदा से एक नहीं रहते, समय के साथ हमारे सपने, चाहते और जरूरतें बदलती जाती हैं। अपनी सोच में बदलाव लाए बिना बहाव के साथ बहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हालात कैसे भी हों, नया कॉलेज, नई नौकरी, शादी, किसी का बिछुड़ना या बिजनेस की उठापटक, हमारा लचीलापन ही हमें आगे बढ़ने और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। टूटने से बचने के लिए हम खुद को कठोर बना लेते हैं, यह भूल जाते हैं कि मुलायम चीजों की तुलना में कठोर चीजें जल्दी टूटती हैं। तना हुआ मन अकड़े हुए तने की तरह तेज आंधी में टूटकर सबसे पहले गिर जाता है, पर सोच का लचीलापन हमें टूटने से बचाता है। खुला दिमाग हमें कठोर नहीं मजबूत बनाता है। सहयोग, साहस और करुणा के बीज मन की मुलायम भूमि पर ही पनपते हैं। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक विल्मा कोस्टाल कहती हैं, लचीली सोच से निजी और सामूहिक दोनों तरह के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। जरूरी हैं नए रास्ते बनाना। क्या आप खुले दिमाग से सोच पाते हैं? दिमाग जितना ज्यादा पुरानी आदतों और विचारों से भरा होता है उतनी ही हमें नई जगह बनाने में दिक्कत होती है। मन का लचीला होना यानी हालात के अनुसार ढलने की काबिलियत,

संभावनाओं के आकाश में सबसे मिलजुल कर उड़ने की चाहत। आध्यात्मिक व कॉरपोरेट गुरु स्वामी सुखबोधानंद कहते हैं, मन की अकड़न में जीवन में गुस्सा, कुंठा, झुंझलाहट और हताशा बढ़ती है। यह एहसास जोर पकड़ने लगता है कि हमसे अलग जो है वह गलत है, दूसरे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मन जब एक ही जगह पर अटक जाता है तब आसानी से नई चुनौतियों के तीरों का निशाना बन जाता है। बंद दिमाग काम करने के बजाय सही गलत, अच्छे बुरे की बहस ज्यादा करता है। और फिर जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम गुस्साने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। चुनौतियों का शिकार होने से बचने के लिए ही हमें नए रास्ते बनाने होते हैं, अलग ढंग से सोचना और काम करना पड़ता है। हालात के अनुसार पानी मुड़ना भी जानता है और मोड़ना भी। निरंतर बहने की यात्रा में मिलना और मिलाना भी मायने रखता है। जिद और अहंकार हमें बीच राह में अटका देते हैं। सवाल अलग अलग हों तो उन्हें हल भी अलग अलग ढंग से ही करना पड़ता है। एक ही फॉर्मूले से सभी सवालों के जवाब नहीं मिला करते, इसलिए सोच को थोड़ा लचीला बनाएं। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिनका देश प्रेम किस तरह से परवान चढ़ा और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक मिसाल बन गया। उस दिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो नौजवान एक किताब को लफ्ज दर लफ्ज पढ़े जा रहा था और कभी आसमान की ओर तो कभी जमीन की ओर मुंह किए आंसू बहा रहा था। लिखने वाले इतालवी विचारक ग्यूसेप मैजनी ने क्या खूब लिखा था, हर लफ्ज धारदार। आपका देश आपका मंदिर होना चाहिए, शिखर पर ईश्वर और आधार में एक समान लोग। पर आपका देश तो गुलामी से लहू लुहान है, हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें तो एक कदम रखते हुए भी देश का आभार मानना चाहिए, पर क्या हम ऐसा मानते हैं? वो युवा सोच सोचकर बिलख रहा था कि कोई इतने साफ तरीके से राष्ट्र व राष्ट्र प्रेम के बारे में कैसे बता रहा है। मैजनी मनुष्य के कर्तव्य बता रहे थे कि आपका देश क्या है, देश आपसे क्या चाहता है। क्या केवल आप ही देश से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और देश आपके प्यार के लिए हर पल तरसता रहता है? देश के बिना आपके पास न तो कोई नाम है, न निशान है, न आवाज है, न ही कोई हक। पर ऐसे देश को आपने कितना प्यार दिया। मैजनी यहां तक लिख देते हैं कि ईश्वर ने आपको मानवता की सेवा के लिए एक देश दिया है। अपने देश में किसी भी तरह की गुलामी और असमानता से मुकाबले के लिए आपका जन्म हुआ है। उस नौजवान की रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। मैजनी बताए चले जा रहे थे कि वोट, शिक्षा, कर्म, ये सब किसी देश के मुख्य स्तंभ हैं। जब तक आपके हाथ इन्हें मजबूती से खड़ा ना कर लें, आराम मत कीजिए। पर तब अपना देश भारत तो गुलाम था, वोट का सवाल पैदा नहीं होता और शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। नौजवान ने मैजनी के लिखे हुए को बार बार पढ़ा और हर बार देश और मानवता के लिए आंखें बहती रहीं। उन्होंने दूर देश में हुए और समय के साथ बीत गए विचारक मैजनी को ही अपना गुरु मान लिया। फैसला कर लिया कि अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देना है। धिक्कार है अभी तक जो जीवन बीता वो अपने देश के काम ही नहीं आया। तब वो 3 रुपए की छात्रवृत्ति और शिक्षक पिता द्वारा भेजे गए 8 रुपए से काम चलाते थे। अक्सर भूखे रह जाते थे पर देश और समाज सेवा के बारे में लगातार सोचते रहते थे। सबसे पहले दुनिया को थामना होगा, उससे पहले देश को संभालना होगा और उसके लिए अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी और उससे भी पहले अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। संयोग से उन्हीं दिनों वो आर्य समाज से जुड़ गए और उससे अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाया। अंधविश्वास से दूर, वैज्ञानिकता और ज्ञान से भरपूर उनके राष्ट्रवाद ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता बना दिया और लोग उन्हें लाजपत राय के नाम से जानने लगे। उनके सामने घर में ही चुनौतियां कम नहीं थी। दादा जैन थे, पिता एक ऐसे हिंदू जो किसी भी मुसलमान से कम नहीं थे और मां सिख विधि विधान में जी रही थीं। पिता तो तभी मुस्लिम हो जाते जब लाजपत राय 2 साल के थे। तब ऐन मस्जिद की सीढ़ियों पर मां ने पिता को घेर लिया था कि ऊपर वाले की मर्जी

महत्व धर्म का उतना नहीं जितना देश और उसकी आजादी का है। देश सुखी और मजबूत होगा तो उससे धर्म की ही शोभा बढ़ेगी ना। अनेक समाज सेवा संस्थान, डीएवी शिक्षा संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, जाने कितने ही अनेक संस्थानों की रचना लाला लाजपत राय ने की। 28 जनवरी को जन्मे लाला लाजपत राय कोरे राजनेता नहीं थे, वो जमीन काम करने वाले आदर्श समाजवादी थे। स्वभाव से निडर, खूब मेहनती और दिखावे से कोसो दूर। लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे जिन्होंने स्वराज को पहले समझा, कांग्रेस को बाद में समझ में आया और स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर तीखे होते चले गए। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते लाठियां भी खाई और इसी वजह से उनकी शहादत हुई। ये शहादत भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक पल साबित हुआ। उसके बाद गरम दल के नेता हों या नरम दल के, आजादी के रणबांकुरों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसे थे लाला लाजपत राय।

लीजिए दोस्तों, सुनिए ये कहानी। एक अंधेरी रात में एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय पर जाकर ठहरा। उस काफिले में 100 ऊंट थे। उन्होंने खूंटियां गाड़ी, ऊंट बांध दिए, लेकिन अंत में पाया कि एक ऊंट अनबंधा ही रह गया। उनकी एक खूंटी और एक रस्सी कहीं खो गई थी। अब आधी रात में वो कहां से एक खूंटी और रस्सी लेने जाएं? काफिले के सरदार ने सराय मालिक को उठाया जगाकर और पूछा, बड़ी कृपा होगी आपकी यदि एक खूंटी और रस्सी हमें मिल जाए। ऊंट तो बांध दिए हैं, एक रह गया। अब अंधेरी रात है, वो कहीं भटक ना जाए। बूढ़े आदमी ने कहा, जो सराय का मालिक था, दोस्त मेरे पास न तो रस्सी है और न ही खूंटी, लेकिन एक युक्ति है, एक चलाकी कर सकते हो आप। जाओ और खूंटी गाड़ने का नाटक करो और ऊंट से कह दो कि सो जाए, मैं तुम्हें बांध रहा हूं। सरदार बोला, अरे ये कैसा पागलपन है? तो बूढ़े ने कहा, भाई बड़े ना समझ हो, ऐसी खूंटियां भी गाड़ी जा सकती हैं जो कि ना हो, और ऐसी रस्सियां भी बांधी जा सकती हैं जिनका कोई अस्तित्व ही ना हो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता है तो ये तो सिर्फ एक ऊंट है। भरोसा तो नहीं था लेकिन मजबूरी थी। उसने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी जो कि थी ही नहीं, केवल आवाज हुई ठोकने की। ऊंट बैठ गया, खूंटी ठोकी जा रही थी। रोज रोज हर रात उसकी खूंटी ठुकती ही थी तो वो बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधने का नाटक किया। रस्सी खूंटे से बांध दी गई, रस्सी जो कहीं थी ही नहीं। ऊंट सो गया। वो सभी बड़े हैरान हुए कि एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लग गई। सभी आराम से सो गए। सुबह उठकर उन्होंने 99 ऊंटों की रस्सियां निकाली। खूंटी निकाली तो सारे सारे ऊंट खड़े हो गए, लेकिन 100वां ऊंट बैठा ही रहा। उसको धक्के दिए लेकिन वो उठा नहीं। फिर बूढ़े से पूछा गया, तब बूढ़े ने दोबारा बताया, अरे ऊंट बड़ा धार्मिक है, जाओ पहले खूंटी निकालने का नाटक करो, रस्सी खोलने का नाटक करो। सरदार बोला, लेकिन रस्सी हो तो खोलू ना, रस्सी है ही नहीं। बूढ़े ने कहा, जैसे बांधने का नाटक किया था ना, वैसे ही खोलने का नाटक करो। ऐसा ही किया गया और ऊंट खड़ा हो गया। सरदार ने उस बूढ़े का धन्यवाद किया और कहा, बड़े अद्भुत हैं आप, ऊंटों के मामले में काफी कुछ जानकारी है आपको। बूढ़े ने कहा, अरे ये जानकारी सिर्फ ऊंटों के बारे में नहीं है, हर इंसान के बारे में है। हर जीव ऐसा ही करता है, खास करके इंसान। झूठी प्रपंचाओं से, झूठे मान्यताओं से, ढोंग से बना रहता है इंसान। पूजा पाठ अध्यात्म उससे करवाया जाता है, वो करता नहीं है। कहीं भी एक घंटी टांग दीजिए, घंटा बजा दीजिए, बस सभी इंसानों का अध्यात्म जग जाता है। मित्रों, सोचने की बात है, कहीं हम उन ऊंटों में से तो एक नहीं है ना।

0: एक और मजेदार कहानी सुनेंगे दोस्तों। ये मैंने किसी सोशल मीडिया पर देखा। एक व्यक्ति के एक गांव में रहा करता था, काफी धनी था, उसका अच्छा व्यापार चलता था। एक अजीब सी बात थी उस व्यक्ति में कि उसको चने खाना बड़ा पसंद था। ज्यादातर टाइम वो हाथ में चने लिए खाता रहता था, घूमने जाता, टहलने जाता, व्यापार करता, किसी से बातचीत करता तो चने ही खाता रहता। लेकिन एक अजीबोगरीब बात उसमें और थी, वो बेहद कंजूस था, कभी किसी की सहायता के लिए तैयार नहीं होता था। जब कभी लोग उससे मिलते और वो चने खा रहा होता तो लोग उससे थोड़े से चने मांगते, लेकिन वो हमेशा साफ इनकार कर देता कि चलो जी, ये चने तो मेरे हैं, मैं किसी को नहीं देता। ठीक है, लोग चुपचाप चले जाते या उससे चने मांगना बंद कर देते। एक बार वो यूं ही अपने खेतों से अपने घर की तरफ जा रहा था चने खाते हुए। रास्ते में उसको एक मुर्गा दिखाई दिया। अचानक से उसके हाथ से एक चने का दाना नीचे गिर गया। मुर्गे ने वो दाना देखा और उस दाने की तरफ लपका, लेकिन वो व्यक्ति कहां मुर्गे को वो दाना खाने देने वाला था। वो मुर्गे से ज्यादा तेज निकला और उसने उस लपक के उस दाने को जमीन से उठा लिया, हल्का सा साफ किया और खा गया। मुर्गे की तरफ बड़े ही हंसती हुई निगाहों से उसने देखकर कहा, अबे चल, इंसान भी मेरे से चने का दाना मांगते हैं और मैं नहीं देता, तू तो एक मुर्गा है, तेरी औकात क्या है। वो इंसान आगे चल पड़ा। उसने एक दाना और मुंह में डाला और अचानक वो दाना उसके गले में फंस गया। उसकी आवाज भी निकलनी बंद हो गई और उसकी सांसें रुकने लगी। वो बहुत घबरा गया। वो बहुत भागता हुआ जल्दी जल्दी गांव के डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसको शहर के डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। वो शहर के डॉक्टर के पास पहुंचा। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, भाई आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। मेरे ख्याल से आप अपने परिवार वालों को बुला लीजिए, उनको बता भी दीजिए तो ठीक रहेगा। और देखिए, हमारी कोई जिम्मेदारी ना होगी, ये चीज भी आपको लिख कर देनी होगी। उस इंसान के पास और रास्ता भी क्या था, उसका गला रुंध रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी। वो भागता भागता गांव वापस आया अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। अचानक उसको बहुत तेज छींक आई। छींक क्या आई साहब, गले में फंसा हुआ दाना उछलकर बाहर निकल गया। उसकी सांसों में सांसें आ गईं, उसके दिल में चैन बैठ गया, सारी चिंताएं हवा हो गईं। तभी सामने वही मुर्गा खड़ा दिखाई दिया और वो जो दाना जमीन पर निकलकर गिरा था, मुर्गे ने प्यार से उस दाने को चुग लिया। कहानी का मतलब यह है दोस्तों, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अगर आपके हाथ से कोई चीज किसी दूसरे तक जाती है तो उसका जाना तय ही था। ये कभी ना सोचिए कि ये मेरा था, मैंने क्यों दे दिया। जो बंधा है, जो लिखा है, वो तो होके रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।
1: कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब मनुष्य को अपने किए बुरे कर्मों का फल मिलने लगता है तब उसे ईश्वर याद आते हैं, परंतु वो बार बार क्षमा मांगने के पश्चात भी प्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। ये तो अच्छे कर्म ही हैं जो प्रभु की शरण में ले जाते हैं। इसलिए हमें सदा सत्कर्म करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े।

संत शिरोमणि कबीर दास जी यह कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करना जितना सहज है उतना ही कठिन भी। जो मनुष्य कामी, क्रोधी और लालची हैं, वो मनुष्य भक्ति नहीं आपितु भक्ति का आडंबर करते हैं। ईश्वर की असली भक्ति केवल वो कर सकता है जो अपनी जाति, वर्ण और कुल का त्याग कर मनुष्य मात्र से समभाव से प्रेम करे तथा सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करे।

0: ईश्वर और स्वयं को एकाकार करते हुए भक्त शिरोमणि संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं अर्थात मेरा अहंकार मेरे भीतर था, तब तक मेरी भक्ति व्यर्थ थी, क्योंकि भक्ति और अहंकार एक साथ कदापि नहीं रह सकते। प्रेम अर्थात प्रभु भक्ति केवल मात्र उस हृदय में वास कर सकती है जहां मैं यानी अहंकार का पलायन हो चुका हूं। इसलिए प्रभु भक्ति में एकाकार होना है तो मन से अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए।
1: संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा ही करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

तो दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनते रहिए।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। आपने सुना होगा, गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आदित्य चोपड़ा भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और हाँ, ड्रामा, ग्लैम और कॉफी के साथ करण जौहर भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी किसान का नाम जो फिल्म प्रोड्यूसर हो? नहीं ना? तो आज सुन लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 5 लाख किसान, जी हाँ, 5 लाख किसान फिल्म प्रोड्यूसर्स। और ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये एक असली सिनेमा की हिस्ट्री है। स्टोरी शुरू होती है 1970s के बीच के दौर से, जब इंडिया में ना OTT था, ना रील्स थी, ना स्किप एड का ऑप्शन था। और उस दौर में दो लोग जिन्होंने सोचा, एक दूध रेवोल्यूशन के हीरो और एक सिनेमा के डीप थिंकर। एक तरफ थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट बनाया, और दूसरी तरफ थे श्याम बेनेगल, जो मीनिंगफुल सिनेमा के लिए जाने जाते थे। बेनेगल साहब अमूल के लिए एड्स और डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्यूमेंट्रीज लोग देख ही नहीं रहे थे। मतलब मैसेज तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऑडियंस मिसिंग। तो बेनेगल साहब ने कहा, सर डॉक्यूमेंट्री से काम नहीं चलेगा, हमें फुल लेंथ फीचर फिल्म बनानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, 1970s में फीचर फिल्म बनाना मतलब बड़ा खर्चा। बजट बनाया गया तो 9 से 10 लाख रुपए, आज के हिसाब से ये शायद किसी स्टार की वैनिटी वैन का मंथली फ्यूल का बजट होगा, लेकिन तब ये बहुत बड़ा अमाउंट था। कुरियन साहब ने कहा, अमूल के पास इतना पैसा नहीं है। यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने ये आइडिया फार्मर्स के सामने रखा। तब तक लगभग 5 लाख किसान अमूल यूनियन का हिस्सा हो गए थे, और उनका जवाब सुनिए, ये हमारी कहानी है, ये बताई जाएगी और हम ही इसे फंड करेंगे। बस फिर क्या था, हर किसान ने अपनी पेमेंट से 2 रुपये डिडक्ट करने की परमिशन दे दी, सिर्फ 2 रुपये। आज के टाइम में 2 रुपये में क्या मिलता है साहब, शायद पार्किंग का हाफ मिनट भी नहीं। लेकिन तब वो 2 रुपये बने एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन, और इस तरह बनी फिल्म मंथन, दुनिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म। आज हम क्राउड फंडिंग को स्टार्टअप कल्चर का कूल वर्ड समझते हैं, तो गांव के किसान क्वाइटली काम ये ऑलरेडी कर चुके थे बैक इन द डे 1970s में। सोचिए, जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो गुजरात के गांव-गांव से लोग ट्रक भर के थिएटर्स आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं, फिल्म खरीदी थी। वो सिर्फ ऑडियंस नहीं थे, वो प्रोड्यूसर्स थे, और जब स्क्रीन पर उनकी कहानी चल रही थी, वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस कहानी में ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, रेड कार्पेट भी नहीं है, कोई पैपराजी और PR भी नहीं है, लेकिन इसमें एक पार्टिसिपेशन है, ओनरशिप है, और एक कलेक्टिव प्राइड है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ स्टार्स का मीडियम नहीं, सिनेमा आवाज का मीडियम है। कभी कभी बड़े शहरों के बड़े लोग हिस्ट्री नहीं लिखते, सिर्फ छोटे छोटे गांव के लोग क्वाइटली
चुपचाप बिना हैशटैग के रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म के एंड में प्रोड्यूस्ड बाय देखें, थोड़ा इमेजिन कीजिए 5 लाख नाम स्क्रॉल हो रहे हैं और हाँ, हर नाम के साथ एक मुस्कान जुड़ी हुई है, क्योंकि कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, कभी कभी मिलकर बनाई जाती है। यही थी आज की कहानी, दूध से बनी सिर्फ मिठाई नहीं, एक फिल्म भी, मंथन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन छोटा है, तो याद रखिए, हिस्ट्री कभी कभी पॉकेट चिल्लर से भी बनती है।

आप भी डरते हो क्या?

बच्चों अब क्या है? शाबाश शाबाश, लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर से है। लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: वो थिंकिंग लेवल प्रो। कुछ लोग इतना ओवर थिंक करते हैं कि अगर कोई के रिप्लाई करे ओके की जगह, तो पूरा ब्रेकअप स्पीच तैयार कर देते हैं। अपने माइंड में सारा टाइम के का मतलब सोचते हैं। के का मतलब खुश हो, खफा हो या खत्म हो।

दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कहानी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई कौन होता है? वो जो टाइम पर ऑफिस आए, वो जो बॉस को इम्प्रेस करे, या वो जो लिंक्डइन पर लिखे प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी? नहीं, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम शायद आपने कैजुअली कभी सुना हो या शायद नहीं। ये कहानी है मैक्स कीथ की, और इस कहानी में वॉर है, पॉलिटिक्स है, प्रेशर है, और बीच में एक फिजी ट्विस्ट भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जमाना सोचिए, यूरोप में टेंशन्स बढ़ रही थी, लेकिन एक अमेरिकन ब्रांड क्वाइटली जर्मनी में ग्रो कर रहा था, कोका कोला। जी हाँ, 1939 तक जर्मनी में 43 बॉटलिंग प्लांट्स और 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। ब्रांड अच्छे से चल रहा था, बिजनेस स्टेबल था। फिर एक दिन वॉर शुरू, बॉर्डर्स बंद, सप्लाई चेन्स खत्म, अमेरिका और जर्मनी दुश्मन, और कोका कोला का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो सीक्रेट सिरप, जर्मनी तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया। अब सोचिए, अगर आप मैक्स कीथ होते तो आप क्या करते? आपके पास प्लांट्स हैं, वर्कर्स हैं, मशीन्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का मेन फॉर्मूला ही नहीं है। आप क्या करते, सोचिए। मैक्स ने हेड ऑफिस को एक मैसेज भेजा, मैं ब्रांड को जिंदा रखूंगा, व्हाट एवर इट टेक्स। लेकिन सिर्फ नहीं था, वो रियलिटी थी। तो उसने सोचा, ठीक है, कोका कोला नहीं बन सकती, कुछ और बनाते हैं। अब यहां से कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। मैक्स ने जर्मनी के फूड इंडस्ट्रीज के लेफ्ट ओवर्स यूज करना शुरू किए, जैसे कि वे, एप्पल फाइबर और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे, और उन सबको मिलाकर एक नया सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। फैंसी नाम नहीं था शुरू में, बस सर्वाइवल का आइडिया था, लेकिन ड्रिंक बिकने लगा, प्लांट्स चलते रहे, वर्कर्स को नौकरी मिलती रही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोका कोला का हेड ऑफिस अमेरिका में क्लूलेस था, उन्हें पता ही नहीं था कि जर्मनी में चल क्या रहा है। वॉर के दौरान मैक्स पर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे, नाजी रिजीम का टाइम था, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कभी कोई नाजी पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सिर्फ एक चीज बना रहा था, ब्रांड को जिंदा। वॉर खत्म हुआ 1945 में, कोका कोला वापस जर्मनी आया, और मैक्स ने क्या किया, उन्होंने ऑपरेशंस वापस दे दिए, प्रॉफिट्स भी दे दिए, और जो नया ड्रिंक बनाया था वो भी दे दिया। सोचिए, वो चाहते तो उस ड्रिंक की ओनरशिप रख सकते थे, अपना एम्पायर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब कोका कोला ने पूछा इस नए ड्रिंक का नाम क्या रखें, तो मैक्स कीथ ने कहा, रन योर फैंटेसी इज वाइल्ड। फैंटेसी, अब इसी फैंटेसी वर्ड से एक नया सेल्समैन बोला, फैंटा। जी हाँ, फैंटा, जो आज हर सुपरमार्केट के शेल्फ पर हमें दिखती है। उसकी कहानी वॉर, सर्वाइवल और लॉयल्टी से शुरू होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये लॉयल्टी थी या स्ट्रैटेजी? कुछ लोग कहेंगे बिजनेस मूव था, कुछ कहेंगे एथिकल टाइटरोप वॉक था, और कुछ कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनलिज्म था। लेकिन एक बात इस सभी में क्लियर है, जब दुनिया टूट रही थी तब एक आदमी ने फैक्ट्रीज चलती रखी, वर्कर्स को जॉब दी, और ब्रांड को सर्वाइव कराया। आज के जमाने में लॉयल्टी का मतलब क्या रह गया है? हम जॉब चेंज करते हैं जैसे कि प्लेलिस्ट चेंज करते हैं। कंपनीज एम्प्लॉयज को सिर्फ नंबर्स की तरह या उनके एम्प्लॉय कोड्स की तरह ट्रीट करती हैं, और एम्प्लॉयज कंपनीज को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। लेकिन इस कहानी में एक अजीब सी सिंप्लिसिटी है, मैक्स ने जो काम था वो किया। ना स्पॉटलाइट थी, ना सोशल मीडिया था, ना कोई पीआर कैंपेन था, बस काम, और फिर एक ड्रिंक जो एक्सीडेंटल थी बट ग्लोबल ब्रांड बन गई। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स से नहीं बनती, कभी कभी वो सिर्फ एक फैक्ट्री फ्लोर पर बनती है, एक डिसीजन से, एक इंसान जो कहता है मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा,
और हाँ, अगली बार जब आप फैंटा की बोतल खोलेंगे, उस फिज के पीछे सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर नहीं होगा, आई एम श्योर उसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा वॉर का प्रेशर और एक एम्प्लॉय की अनडाइंग लॉयल्टी की कहानी सामने आएगी। तो दोस्तों, सवाल फिर वही है, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉय कौन? शायद वो जिसका नाम हेडलाइन में नहीं आता, लेकिन जिसका काम वक्त की कसौटी पर टिक जाता है और कभी कभी एक फैंटेसी बनकर दुनिया भर में बिकता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: कल लोग इतने ऑक्यूपाई हो गए हैं मेंटली कि अगर घर में कभी आग लग जाए ना तो पहले रील बनाएंगे। गाइस, फायर इन माय हाउस, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।

मैं चाय को चाय के लिए पीती हूँ। दोस्तों जरा गौर फरमाइए, मैं चाय को चाय के लिए पीती हूँ। लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरा रुख किस तरफ है जरा सुनिए, और जमाना किधर जा रहा है ये भी देखिए।

होती, कटिंग चाय पर दोस्ती होती है, ऑफिस की टेंशन डिसॉल्व होती है, ट्रेन के सफर में अजनबी दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए मैं दूध वाली चाय की दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि कभी कभी एक प्याली चाय को उसकी असल सूरत में आजमा कर देखिए। शायद आपको लगे कि टेस्ट हल्का है, लेकिन धीरे धीरे वो सटल फ्लेवर दिल तक पहुंच ही जाए और फिर समझ आए कि हर चीज को मीठा बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी असली कड़वाहट में भी खूबसूरत होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप चाय बनाएं, जरा रुक कर सोचिए, आप चाय पी रहे हैं या दूध में थोड़ी सी चाय। और अगर कभी मौका मिले तो एक प्याली चाय को सिर्फ चाय के लिए पीकर देखिए, हो सकता है कि उस सिप में आपको जिंदगी का असली फ्लेवर मिल जाए। पी के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: हर ग्रुप में एक दोस्त जरूर ऐसा होता है जो बोलता है, तू पे कर दे यार, मैं जीपे कर दूंगा। और वो जीपे आज तक ट्रैफिक में कहीं अटका हुआ है भाई।

0: करता है तेरा।
1: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: इंडिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। सफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। हर किसी की कोशिशें और उसको करने का स्तर भी अलग अलग होता है। लगातार इस बात के लिए खुद को कोसते बिल्कुल ना रहें कि आप दूसरों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। लेखिका एनी स्वीने कहती हैं, सफलता को अपने हिसाब से परिभाषित करें, उसे अपने नियमों से हासिल करें और ऐसा जीवन जिएं जिससे आप खुश हों। हमें लगता है कि सब ठीक है और सब हमारी योजना के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन तभी एक पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सब बदल जाता है, हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। जीवन जो कठिन लग रहा था वो बड़ा ही सहज लगने लगता है। यही जीवन है दोस्तों, जो सीधी रेखा में कभी नहीं चलता। हमें गली मोहल्लों से लेकर देश समाज की हर बात इधर उधर से पता चलती ही रहती है। सूचनाएं हमें ताकतवर बनाने का एहसास कराती हैं, लेकिन लेखक और चिंतक चार्ल्स एफ ग्लासमैन कहते हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, खबरों में पढ़ रहे हैं ना, केवल उस पर भरोसा मत करिएगा। खुद को जानकर समझने की गलती ना करिएगा। सबसे भरोसेमंद सूचना वो है जिसे आप भीतर से महसूस कर पाते हैं।
1: बने रहिए आरजे समीर के साथ।

ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ।

0: एक आस का पंछी।
1: मैं जब भी किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूँ तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है। नींद से इतना भी प्यार ना करो दोस्तों कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: नेता, आप लोग कौन है? किसान। हम लोग किसान हैं। आप लोगों के पैर में ये कीचड़ क्यों लगा हुआ है? किसानों ने कहा, हम लोग खेत में काम करके आ रहे हैं। नेता ने कहा, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे, जिससे कि आप लोगों के पैरों में कीचड़ ना लगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना उसे भूल जाता है।

खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

अपने दोस्त आरजे समीर के साथ आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं आप, तो तरीका बदलिए, इरादा नहीं।

जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक साधु ने कुत्ते से पूछा, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है बे? कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, महाराज तपस्या करो, पंचायत नहीं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान सब कुछ कर सकते हैं।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन।
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुव पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मॉनसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
4: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
3: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
4: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है
2: और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए,
1: लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम चाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से?

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन ना हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस

0: देने से सास संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
0: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
0: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
0: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
0: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
0: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
0: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी, ये झूम खेती क्या है?
0: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
0: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
0: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
0: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
0: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
0: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: अरे रेंजर चाचा आप आइए। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी, नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर, और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ दादाजी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है, और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो, चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा।
3: हाँ, मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे?
3: ये बात है। देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट,
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी?
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे।

0: आ गया। आखिर तुमने कर ही दिखाया।
1: माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
2: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
1: सभी इत्मीनान से बैठे थे कि पंखे के ऊपर से चीं चीं की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
2: अरे
0: वो देखो फिर से आ गई घर में।
1: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: अरे
4: सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
2: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
0: सुनो तो रुक जाओ।
1: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
2: गई।
1: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
5: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी ये।
1: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
0: तुम्हारे बस की नहीं है।
2: फिर कोशिश करता।
1: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
2: अब देखो
1: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
6: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
0: हाँ?
6: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
0: अरे हाँ बेटी।
1: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
0: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
1: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
2: अरे
1: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
2: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
9: पंच पंच खेलेंगे।
8: हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
0: छोटे।
10: हाँ भाई बड़े।
0: आज हम पार्टी करते हैं।
10: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
0: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
10: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं, हमें तो यहाँ खाना

0: भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
1: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ
2: रहने के लिए बुला सकते हैं।
0: हाँ भाई बड़े, मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
2: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
0: हाँ हाँ, हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
3: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो। नहीं समझ आया? तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी, इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: निकल।
1: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
0: छोटे
2: हाँ भाई बड़े,
1: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है, और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब क्या था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा, अब दिखाओ जरा कहाँ है वो दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो। बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों, है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा, कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है, है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या बताए? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ, समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल,
6: है ना?
4: डॉक्टर साहब क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी। लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
1: अरे भाई छोटे।
0: हाँ भाई बड़े।
1: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
0: हाँ
1: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
0: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
1: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी दादा, भूख लगी है बहुत। हाँ, भूख लगी है,
0: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहां जगह बनाते हैं। चलो
1: चलो आओ। दादा, चलो
0: चलो
1: दादा, चलो।
8: दादा, चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

काल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा।
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं। हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
2: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पे अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में। हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें, और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही हैं, केबीके इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में 3 सिग्मेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देख रेख इस वर्षा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का सफल किसान हो लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और उस बदलाव से चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगनी हो रही किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। I'm gonna go get some more.

Hallelujah.

અમે ગામથી મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, મારા કાકા, મારી કાકીઓ, એ બધા

0: और आप हमारे ही थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
3: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
4: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचना को बचाई जा सकते हैं।
3: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
4: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृतिक कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
3: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
0: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के

0: रेडियो टांडा भील आप रेडियो आपड़ी बातें।
1: और साथियों अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुधन, और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
3: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या Group 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
2: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
3: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
2: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
0: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
2: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन

0: उर्वरता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान पशुधन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
2: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

Hallelujah.

0: तरफ मारे थोड़ा सा।
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दाली, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है, किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है, यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेतीबाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
4: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें

0: ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकार है इसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहाँ पर चलता नहीं है। ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जाता है, और जहाँ पर पथरीला इलाका है वहाँ पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं, तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे में हमारे किसान साथी तालाब का बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहाँ पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
0: 9425416603। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: तो साथियों, अब हमारा यानी के इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी के फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: अपना रेडियो अपनी बात है। तो आपके आरजे मनीष
1: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो दरअसल एक कलाकार भी हैं। वो कविताएं लिखते हैं और खास करके बच्चों की कविताएं लिखते हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। इनका नाम है दुष्यंत कुमार सोनी साहब। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बातें करेंगे, आपके बताए हुए गीत सुनेंगे और आपकी कविताएं भी सुनेंगे। तो दुष्यंत जी, बस मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पहली कविता जो बच्चों के लिए आपने लिखी है वो सुनाएं।
1: जी सर, थैंक यू सर। मैं सुना रहा हूं आपको बच्चों के लिए कविता। कविता का शीर्षक है सर बंदर।
0: जी।
1: बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया, खोज रहा था चना चबैना, पर पहले वह केला खाया। पापा के कमरे में जाकर बैठ गया टेबल के ऊपर, लगा मोबाइल कान में अपने, हुप हुप कर मुंडी हिलाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया।
0: बहुत बढ़िया।
1: पास वही दादा का कमरा, दादी काट रही थी अमरा, छीन के चाकू चढ़ा पलंग पर, पूंछ उठाकर दांत दिखाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया। बाथरूम वह घुसा बाद में, फिसल गया साबुन के झाग में, देख आईना लगा मटकने, तेल गिराया मंजन खाया, बंदर आया, बंदर आया, देखो घर के अंदर आया।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता बंदर के ऊपर, जो कि सचमुच अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। कहावत भी है ना कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाए तो वो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। बहुत खूबसूरत दुष्यंत भाई, बहुत खूबसूरत। तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
1: तो सर, मैं पहले तो सबसे पहले बच्चों पे ही एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाया है।
0: जी।
1: उसका बोल है, बच्चे मन के सच्चे।
0: बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों, दुष्यंत जी की फरमाइश पर ये गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ।

0: बहुत ही प्यारा गीत। दुष्यंत भाई, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और अभी आप कहां रहते हैं और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए।
1: जी अवश्य, सभी श्रोतागणों से मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से आदिवासी बाहुल्य जिला जिसे उमरिया कहते हैं, वहां पे मैं निवास करता हूं। और उमरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा इसका नाम है, एक नदी पहाड़ से निकलती है जिसका नाम है उमरार। उमरार नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम उमरिया पड़ा। और हमारे उमरिया जिले में बांधवगढ़, जो कि पूरे विश्व में विख्यात नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व एरिया है, तो वहां पे सिचुएटेड है, उमरिया में ही है ये। और उमरिया के पास ही एक बहुत बड़ा ताप विद्युत गृह है जहां पर एक जोहिला नामक नदी जो अमरकंटक से निकलती है उसे बांधकर बनाया गया है, उसका नाम संजय गांधी ताप विद्युत गृह है। और यहाँ पर एक शक्तिपीठ माता शक्ति की स्वरूपा माँ विराशनी का एक बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन के लिए उनके जाते हैं और मनोकामना उनकी पूरी होती है। उमरिया एक छोटा सा जिला है जहां पर हम सभी लोग पूरी आत्मीयता से निवास करते हैं और मध्य प्रदेश के बिल्कुल हृदय स्थल पर होने के कारण इसकी अपनी कई खूबियां हैं। बताना चाहूंगा कि उमरिया में एक छोटा सा गांव है जिसे करकेली बोलते हैं। करकेली गांव ऐसा गांव है कि जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरने के कारण ही उस गांव का नाम करकेली पड़ा हुआ है। तो यही है अपना उमरिया जो सांस्कृतिक विरासतों से भरा है, लबरेज है।
0: बहुत खूब दुष्यंत भाई। दुष्यंत भाई, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अगली कविता हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी सर, तो मैं अगली कविता में आपको एक सुना रहा हूं जो है एक नाई की दुकान। तो नाई की दुकान उसका शीर्षक है, मैं बोलते जा रहा हूं। कैंची, कंघी और उस्तरा जैसे कई सामान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। देखो ये है बड़ा आईना, सीधा सरल विशाल, होते मुंडन ही दिखलाए चिकना साफ कपाल। आगे पीछे दाएं बाएं दिखती इसकी शान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। छोटी कैंची की रहती है अच्छी खासी पूंछ, आए दिन यह बड़े बड़ों की काटे लंबी मूंछ। कच कच कच कच करती चलती जैसे चले जुबान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। लंबा सीधा रखा उस तरह तेज बड़ी है धार, हुई चूक तो करता सीधे यह गर्दन पर वार। करे हजामत रखे सलामत सबकी यह मुस्कान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान। आखिरी बंद है इसका, राजा मंत्री चोर सिपाही सबका आना जाना, बाल कटाने जिसको पहले आकर शीश झुकाना, मुंडी जिसने तनिक हिलाई तो कट जाए कान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं नाई की दुकान, नाई की दुकान।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत सुंदर दुष्यंत भाई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: सर, मेरा एक गाने का बोल है जिसे अरिजीत सिंह साहब ने गाया है, तेरा फितूर।
0: तेरा फितूर अरिजीत सिंह जी ने गाया है। आइए दोस्तों, सुनवाते हैं दुष्यंत जी की फरमाइश पर यही प्यारा सा गीत।

0: दुष्यंत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे सी कविता के लिए जो बच्चों के लिए आपने लिखी है। दुष्यंत भाई, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? जब आप बच्चे थे तो क्या बनना चाहते थे आप?
1: मैं शुरू से मेरी सर इच्छा ये थी
0: जी
1: कि मैं सेवा में जाऊं और वहां पर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश की सेवा, समाज हित और बच्चों के लिए काम करूं।
0: जी
1: शुरू से मेरी इच्छा रही है सर।
0: वाह, क्या बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो बचपन में सोचा वही आप कर रहे हैं, तो एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि होती है और फिर हम अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम भी देते हैं। बहुत सुंदर। तो दुष्यंत भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली कविता हमें सुनाएं।
1: जी सर। तो अगली कविता का शीर्षक है सर, फूल और तितली। सुबह सुबह एक छोटी तितली आई फूल के पास, हाथ पकड़कर उससे बोली, क्यों हो आज उदास? शांत फूल यह सुनकर बोला, प्यारी तितली रानी, फोन नहीं करती हो अब तुम, बोलो क्या परेशानी? कई दिनों से देखा मैंने, ना कोई मैसेज आया, फ्रेंड लिस्ट में सब है बाकी, तुमने मुझे हटाया। तितली बोली, ठंड बहुत है, दादी सोती साथ, घंटी बजते ही जग जाती, लिए मोबाइल हाथ। डोंट वरी, स्माइल कर दो, गर्मी आने वाली है, खत भेजा है दादाजी ने, दादी जाने वाली है, दादी जाने वाली।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही प्यारी कविता, शानदार दुष्यंत भाई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक प्यारा सा गीत भी सुनवाइए।
1: सर, अभी एक फिल्म है सर, केसरी।
0: जी,
1: फिल्म केसरी एक देश प्रेम पर आधारित है और मनोज मुंतशिर साहब और दीपराज साहब ने शायद उसे आवाज दी है। गाने के बोल है, तेरी मिट्टी में मिल जाओ।
0: जी जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सेंसेशनल गीत है। आइए दोस्तों, सुनवाते हैं इसी गीत को दुष्यंत भाई की फरमाइश पर।

0: कृष्ण भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत गिफ्ट, तोहफा, चाहे वो छोटा सा हो, कौन सा मिला और वो किसने दिया आपको?
1: सर मुझे सबसे पहले तो सर मेरी जो जब बिटिया हुई थी तो मुझे वो दुनिया का सबसे अच्छा उपहार लगा था
0: जी,
1: और तब मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ था, बहुत खुश हुआ था और उसको मैं बहुत मानता हूँ। मेरी बिटिया का नाम दूरवा है
0: जी,
1: जो मेरे ही ढंग से रहना सीख रही है। उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। वो अभी कक्षा 7 पर में पढ़ती है
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छी बेटी है मुझे, जो ऊपर वाले ने और मेरी श्रीमती श्रीमती वर्षा जी ने मुझे गिफ्ट किया।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आपने सुना, सबसे अच्छी सबसे प्यारी गिफ्ट दुष्यंत जी को उनकी बेटी के रूप में मिली है, बहुत सुंदर। तो दुष्यंत जी एक और कविता सुनाइए हमें अपने बच्चों के लिए।
1: तो सर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बेटी के ऊपर मेरा ज्यादा झुकाव है
0: जी,
1: तो
0: जी
1: उसकी की कुछ लाइनों को बता रहा हूँ सर कविता के रूप में
0: जी।
1: मेरी बिटिया कहती है सर कि आप एक पापा दुकान खोल लो।
0: अच्छा ओके।
1: वो कहती है कि आप सर्विस मत करो
0: जी,
1: एक छोटी सी दुकान खोलो, किराना खोलो, जहां मुझे टॉफी बिस्किट आदि सब मिल जाए। तो उसी की इच्छाओं पे सर मैंने लिखा था जो आपको बता रहा हूँ
0: जी।
1: तो मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम एक पॉप किराना। रोज रोज की पूछा पाछी, क्या पसंद है ना पसंद है। थक जाती हूँ रोज बताके, अब मुझको है नहीं बताना। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम एक पॉप किराना। बिन पैसे की गोल मिठाई, जब जी चाहे नान खटाई। बैग में रख के चिप्स के पैकेट, आए मेरी फ्रेंड कराना। रख के टॉफी बिस्कुट खोलो, पापा तुम्हें टॉप किराना। चाहे महंगी या फिर सस्ती, फ्रूटी पीकर करूंगी मस्ती। किट्टू के मैं लेकर चकरी, उसे खिलाऊं साबूदाना। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम्हें टॉप किराना। मांगू ना मैं माल खजाना, नहीं चाहिए चंदा मामा। रख के टॉफी बिस्किट खोलो, पापा तुम्हें टॉप किराना।
0: मैं बहुत बहुत आभार आपको इतनी प्यारी प्यारी कविताओं के लिए। तो अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप हमारे मित्रों को?
1: जी सर, मुझे एक बहुत ही फेमस गीत है, फिल्म है नदिया के पार
0: जी,
1: और उसका एक गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य। आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत को सुनते हैं।

0: दुष्यंत भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: हालांकि सर आपने बहुत कठिन प्रश्न मुझसे कर लिया है
0: जी।
1: सर मैं अपना परिचय तो यही कहूंगा कि सर एक समाज के लिए बच्चों के लिए समर्पित सादगी पूर्ण एक व्यक्ति हूं सर, और मुझे हंसना हंसाना मस्करी करना बहुत अच्छा लगता है। हर उम्र के दोस्त मेरे पास उपलब्ध है सर। मैंने जो रिटायर हो चुकी पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती है और बातें होती रहती हैं, हंसी मजाक भी होता रहता है। बच्चों से भी मेरा बहुत लगाव है, परिवार को मैं बहुत समय देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे सरकारी दायित्व होते हैं या रोजी रोटी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां हमें उन्हें ज्यादा समय देना होता है, तो कई बार परिजनों की झुंझलाहट भी मुझे सहनी पड़ती है। और इन सब के बावजूद मैं अपना परिचय ये कहूंगा कि हमेशा खुश रहते हुए सबको जितना हो समय देना चाहिए और उस समय को एंजॉय करना।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अगला कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप हमारे दोस्तों को?
1: सर मैं एक देशभक्ति गीत थे सर, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।
0: बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जो रोंगटे खड़े कर देता है। आइए दुष्यंत जी की फरमाइश पर दोस्तों इसी गीत को सुनते हैं।

0: गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए?

0: दुष्यंत जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी कविताएं हमें सुनाई, हमें आह्लादित किया, हमारे दोस्तों को अपनी कविताओं से प्रसन्न किया, बच्चों को खुश किया, अपनी फरमाइशें बताई प्यारी प्यारी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आप हमारे सुनने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी सर, मैं कहूंगा कि सर हम सबको पहले स्वयं को निखारना है, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है और फिर परिवार को संभालते हुए देश और समाज की बात करनी है।
0: जी बहुत सुंदर दुष्यंत भाई, थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस रेडियो चैनल को और बारंबार मैं आप सभी को नमन करता हूँ।
2: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। सफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। हर किसी की कोशिशें और उसको करने का स्तर भी अलग अलग होता है। लगातार इस बात के लिए खुद को कोसते बिल्कुल ना रहें कि आप दूसरों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। लेखिका एनी स्वीने कहती हैं, सफलता को अपने हिसाब से परिभाषित करें, उसे अपने नियमों से हासिल करें और ऐसा जीवन जिएं जिससे आप खुश हों। हमें लगता है कि सब ठीक है और सब हमारी योजना के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन तभी एक पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सब बदल जाता है, हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। जीवन जो कठिन लग रहा था वो बड़ा ही सहज लगने लगता है। यही जीवन है दोस्तों, जो सीधी रेखा में कभी नहीं चलता। हमें गली मोहल्लों से लेकर देश समाज की हर बात इधर उधर से पता चलती ही रहती है। सूचनाएं हमें ताकतवर बनाने का एहसास कराती हैं, लेकिन लेखक और चिंतक चार्ल्स एफ ग्लासमैन कहते हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, खबरों में पढ़ रहे हैं ना, केवल उस पर भरोसा मत करिएगा। खुद को जानकर समझने की गलती ना करिएगा। सबसे भरोसेमंद सूचना वो है जिसे आप भीतर से महसूस कर पाते हैं।
2: बने रहिए आरजे समीर के साथ।

ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं।

0: लगन पर पहुँचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर, दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: मैं जब भी किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूँ तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है। नींद से इतना भी प्यार ना करो दोस्तों कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: नेता, आप लोग कौन है? किसान। हम लोग किसान है। आप लोगों के पैर में ये कीचड़ क्यों लगा हुआ है? किसानों ने कहा, हम लोग खेत में काम करके आ रहे हैं। नेता ने कहा, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे, जिससे कि आप लोगों के पैरों में कीचड़ ना लगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना उसे भूल जाता है।

खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

0: जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है, वरना पहले तो नाक में उंगली डाल डाल कर नाक की ऐसी तैसी करता रहता था।
1: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं आप, तो तरीका बदलिए, इरादा नहीं।

जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक साधु ने कुत्ते से पूछा, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है बे? कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, महाराज तपस्या करो, पंचायत नहीं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। अकेला इंसान सिर्फ कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इंसान सब कुछ कर सकते।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज साहब। बाकी की जानकारियां हम नाज साहब से ही लेंगे। नाज साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: बहुत शुक्रिया
0: नाज साहब। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और बस एक छोटा सा सवाल, आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ रोचक बताइए।
1: हाँ, मैं मुरादाबाद जनपद के पास ही एक गांव है पूरी रवाना
0: जी,
1: तो मैं वहां का रहने वाला हूँ और 10 जनवरी 1961 को मेरा जन्म हुआ वहां। मेरे पिताजी का नाम रामगोपाल वर्मा और माताजी का नाम भूरी देवी था। और करीब 89 से मैं मुरादाबाद में ही परमानेंटली रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जॉब लगा था तो यहीं पे मैंने घर बना लिया है और यहीं रह रहा हूँ। वैसे मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है वो मुरादाबाद में ही हुई है, क्योंकि हमारा गांव मुरादाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो गांव से आए हुए मुझे 3 से ज्यादा का वक्त हो गया है।
0: जी बहुत खूब,
1: 35 के करीब। जी
0: बहुत खूब। तो ना साहब मैं गुजारिश करूंगा हमारे दोस्तों के लिए, हमारे लिए एक अपनी एक गजल सुनाएं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है,
0: जी
1: जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है।
0: वाह।
1: जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है, और जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है।
0: बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। जिंदगी होती है जब मौत की आगोश में गुम, पंछी उड़कर कहीं आकाश में खो जाता है, और खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा।
0: वाह।
1: खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहां आता है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये खाइयां लेती हैं बरसात के पानी का मजा, ये हुनर खुश्क पहाड़ों को कहां आता है, और ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, बंद कमरे में जो जलता था बड़ी शान के साथ, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है, वो दिया सहन में जलते हुए घबराता है। और आखिरी शेर है गजल का कि आसमां आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, तेरी औकात ही क्या किस लिए इतराता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसमां आ गया कदमों में जमी के वो देख, तेरी औकात ही क्या किस लिए इतराता है, जब कोई अक्स निगाहों में ठहर जाता है, दिल तमन्नाओं को कपड़े नए पहनाता है।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब। दिल की तमन्नाओं को छेड़ दिया, दिल की तमन्नाओं को हिला डाला सर। वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गजल। ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन है।
1: जगजीत सिंह।
0: वाह, बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के, बिना दूसरी सोच के अपना पसंदीदा गजल गायक को आपने बयां किया, बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए उन्हीं की कोई गजल हमारे दोस्तों को सुनवाइए।
1: जी, वो गजल है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं।
0: वाह क्या बात है,
1: कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजल है
0: जी।
1: जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है

0: ही नहीं।
1: वाह वाह वाह,
0: जगजीत सिंह ने भी गाई है और शुजात अली खान ने भी गाई है गजल, बहुत प्रसिद्ध गजल है नूर साहब की।
1: तो किन साहिबान की गजल को सुनवाया जाए, आप हुक्म करें।
0: शुजात हुसैन खान ने गाई है, ये रिश्ता में गाई थी
1: जी,
0: और बहुत अच्छी तरह से गाई थी उन्होंने
1: जी।
0: मैं चाहता हूँ वही सुनवा दीजिएगा।
1: ठीक है, बिल्कुल जैसा आपका हुक्म सर। तो आइए दोस्तों, इस गजल को सुनते हैं नास साहब की फरमाइश पर।

0: ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी गजल के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब भी आपको कुछ थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप उसमें?
1: मैं साहब लिखना पढ़ना ही बस मेरी हॉबी समझ लीजिए
0: जी,
1: इसके अलावा कोई और हॉबी नहीं है, या थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ और कुछ नहीं।
0: ओके,
1: जिंदगी से जो भी वक्त मिलता है, दफ्तर से आने के बाद, अब तो मैं खैर रिटायर हूँ 4 साल से
0: जी,
1: तो जनवरी 21 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था
0: जी,
1: और जिंदगी की भागदौड़ में सब कुछ जैसे भी जो भी समय मिला वो थोड़ा सा मनोरंजन में, लिखने पढ़ने में, घूमने फिरने में, यही बस उसको व्यस्त किया है।
0: बेहतर, बेहतरीन। तो ना साहब, मेरी गुजारिश है अपनी अगली गजल, एक और गजल हमें सुनाएं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं
0: जी।
1: कहता हूं कि हर वक्त हूं किसी ना किसी इम्तिहान में।
0: बहुत खूब।
1: आपने महसूस किया होगा कि जिंदगी यूं तो खैर इम्तिहान का नाम है
0: जी,
1: बहुत से इम्तिहान आते रहते हैं और जब ज्यादा इम्तिहान इंसान पर आते हैं तो उसके लहजे में भी कुछ कड़वाहट आ जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा।
1: यहीं से मैंने ये शेर उठाया है कि हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में।
0: ओहो, क्या बात है,
1: बहुत शुक्रिया। हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में
0: जी,
1: और अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में।
0: वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया,
0: बहुत खूब।
1: अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में और सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए
0: जी।
1: सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में।
0: क्या बात है, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में, और गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी
0: जी,
1: गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में।
0: वाह, बहुत खूब।
1: सबको जगह मिली है, बहुत शुक्रिया, कि गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में। उन नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब
0: जी,
1: नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब, सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में, और मक्ता पेश करता हूं कि दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज
0: जी,
1: दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में, बहुत शुक्रिया। कि दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में, हर वक्त हूं किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तलखी जबान में।
0: तलखी जबान में, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल, बहुत ही प्यारी गजल। तो ना साहब, अपने पसंद के गजल गायक की अगली कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे आप?
1: हाँ, मैं गुलाम अली साहब ने गजल गाई है, रुक गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे
0: जी।
1: रुक गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे, गम का तूफान तो बहुत तेज था, ठहरा कैसे।
0: अरे वाह, क्या बात है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: बेहतरीन। ना साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं?
1: मोटिवेटेड रखने के लिए साहित्य से अच्छी कौन सी चीज हो सकती है?
0: जी,
1: साहित्य तो वैसे भी हमें प्रेरित करता है, और मैं समझता हूं कि जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मोटिवेटेड रहते ही अमूमन।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात सही है। भला सूरज को रोशनी की क्या जरूरत है, सूरज के पास तो खुद ही रोशनी ही रोशनी है। बहुत बढ़िया, जो साहित्यकार हैं उन्हें भला मोटिवेशन की क्या जरूरत है, वो तो खुद मोटिवेशन है। बेहद खूबसूरत। तो ना साहब, अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल और आप हमें सुनाए।
1: बेहतर बेहतर, मैं हाजिर करता हूं।
0: इरशाद
1: कहता हूं कि जहन की आवारगी को किस कदर प्यारा हूं मैं, जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं,
0: बंजारा मैं हूं। बहुत बढ़िया,
1: जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं, और राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल।
0: बहुत खूब।
1: बच्चों में इंसान अपने आप को तलाश करता है
0: जी,
1: और बच्चों के आगे झुकता है
0: जी,
1: उनकी इच्छाओं के आगे झुकता है कि राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
1: शुक्रिया। वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं, राख ने मेरी ही ढक रखा है।

0: मुझको आजकल, वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं, और जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास।
1: सोख ली सारी मिठास
0: जी, जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर बे इंतहा खारा हूं मैं।
1: बे इंतहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर बे इंतहा खारा हूं मैं, और अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले।
1: जी,
0: अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले। तू मेरा आकाश है, तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं।
1: तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं, क्या बात है, बेहतरीन।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत बढ़िया।
0: बहुत शुक्रिया। ये अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले। तू मेरा आकाश है, तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं, और आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद।
1: जी,
0: आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद, वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं।
1: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।
0: बहुत शुक्रिया। ये आपकी सांसें मिली तो खिल उठा पूरा वजूद, वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं।
1: जी,
0: और मकता है कि मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज।
1: जी जी,
0: मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज, फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं।
1: आवारा हूं मैं, आहा,
0: फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं। मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज, फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं।
1: जी,
0: जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं।
1: जी,
0: साथ चलती है मेरे, ये कैसा बन जा रहा हूं मैं। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब साहब। मैं तो आप सभी शायरों का और तो कुछ जानू ना जानू, इतनी बुद्धि नहीं है मुझ में, लेकिन इतना पता है कि लफ्जों से और शब्दों से खेलने का जो जाल आप लोग बुनते हो, ओए होए होए होए होए, थोड़ा बहुत भी कोई समझ जाए तो बच नहीं सकता, कुछ भी हो जाए साहब। बेहतरीन, मतलब क्या खेलते हैं साहब, क्या खेलते हैं, बहुत बढ़िया। क्या बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते होंगे जो आप लोग खेलते हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इस इंतजार का भी दोस्तों अपना ही मजा है। आइए सुनते हैं अबीदा परवीन जी की ये गजल, देर लगी आने में।

0: ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल अब बस हमें और सुना दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: हुजूर मैं एक गजल आपको जो पेश कर रहा हूं
0: जी,
1: ये बिल्कुल ताजा गजल है, आप यूं समझिए कि इसमें से भाप उठ रही है।
0: ओ माय गॉड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
1: और चूंकि शायर तो या कवि अपने चारों तरफ के वातावरण में जो देखता है
0: जी
1: उसी को लिखने की कोशिश भी करता है
0: जी जी,
1: क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है।
0: बिल्कुल।

0: देखिए, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूं
1: जी,
0: और आपने जो गजल अभी पिछली बार
1: चुनी
0: सुनाने का वादा किया है
1: जी,
0: बहुत प्यारी गजल है। और यकीन जानिए कि जो मेरी पसंद है, मुझे लग रहा है कि वही आपकी पसंद है, या जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप ही की पसंद सुनूं इस
1: बार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इस बात पे ना साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस जरा नवाजी का। मुझे याद है, मैं 1986 से 1990 के बीच में IIT BHU में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे से दो साल सीनियर्स के बैच को हम लोगों ने फेयरवेल दिया, और उसमें एक हमारे सीनियर, मेरे सीनियर हैं रविंद्र पांडे जी, जो आज की डेट में वड़ौदा में हैं। और तो उस वक्त मैं तो बिल्कुल बच्चा ही हुआ करता था, और उन्होंने फेयरवेल के दौरान एक गजल सुनाई जो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अटक के रह गई। और सालों साल गुजर गए, मतलब सर 30-35 साल गुजर गए,
0: और
1: समाओ मैं उनसे संपर्क में नहीं रह सका, लेकिन वो गजल दिमाग में घूमती रही। और पता नहीं कहां से एक दिन मुझे उनका नंबर मिला, तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने उनको बोला, सर मैं समीर गोयल बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, तो वो पहचान थोड़ा सा नहीं पाए क्योंकि 35 साल गुजर चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ये याद है कि 1989 में हमने आपको फेयरवेल दिया था BHU में, और आपने वहां पर एक गजल सुनाई थी, तो वो गजल के जो दो लाइनें थी बस वो ही मुझे याद रह गई, उसके बाद सब भूल गया मैं। तो वो सर गजल है किसकी और कौन साहब हैं, कहां मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो उनको याद आया, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा वो बच्चा बोल रहे हो तुम। मैंने कहा जी सर गुरुजी, मैं वही बोल रहा हूं। तो कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बताई, तो वही गजल मैं आज आप सब लोगों को सुनाना चाहूंगा, कि वो गजल है पंकज उदास साहब की।
0: अच्छा अच्छा।
1: और वो कुछ इस तरह थी, गम की घटा जो छाए तो फिर झूम के बरसे। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये पंकज उदास की गजल है, ढूंढ ले बेटा मिल जाएगी। तो आपकी इजाजत हो तो यही गजल मैं अपने दोस्तों को सुनवाना चाहूंगा।
0: लाजवाब गजल है, लाजवाब गजल है, इसका हम भी मजा लेंगे और हमारे श्रोता भी मजा लेंगे। बहुत खूबसूरत गजल है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मैं अपने सुनने वालों की तरफ से मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपकी बेहतरीन बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरी सीधी सादी लेकिन बहुत भारी भरकम मैसेज वाली गजलें हमने सुनी, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: मैं इन मोहब्बतों के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार फिर आपका और हमारे श्रोतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। खेती बाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं। हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
2: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पे अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में। हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही हैं, केबीके इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में 3 सेगमेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देखरेख इस वर्षा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का

सफल किसान हो, लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। और उस बदलाव से, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगनी हो रही किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है, जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

Hallelujah.

0: शराब मारे थोड़ो
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
3: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है।
4: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 मिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगण प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं।
3: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
4: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
3: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
0: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा। और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा। और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ा सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों की फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है, इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
8: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुधन, और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
7: और आपके आरजे वर्षा के साथ में सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार, आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
9: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजना के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है, तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, एसएचजी से हो या ग्रुप एट के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
3: साथ इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
9: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
3: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
3: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
8: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान पशुधन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
7: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत। I'm gonna go get some more.

Yeah.

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा मैं तो मैंने जान की मारा भाई मारी बहन मारा काका मारी काका।

0: रही थोड़ा सा।
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर।
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी जीआई टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है, किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं जो खास पहचान बन चुके हैं। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने तीन सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है, यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है। दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी। श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेतीबाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं।
4: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं, अच्छा समय है। साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है। कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहाँ पर चलता नहीं है, ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जाता है और जहाँ पर पथरीला इलाका है वहाँ पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं, तो विशेष तौर पर हमारे हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और ऐसे में हमारे किसान साथी, तालाब का बहुत ज्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहां पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें, तो वहां पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेक डैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें, और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
3: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। खेती बाड़ी कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और श्रोता साथियों, हमारे किसान साथी बहुत अच्छी तरीके से होंगे और हम आशा करते हैं ऐसी धूप में हमारे किसान साथी खास तौर पर इस गर्मी का मजा ले रहे होंगे। लेकिन किसान साथियों, कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अपना अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा और साथ साथ में कुछ बातें हैं गर्मियों के मौसम में किस तरीके से हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बातचीत करते चले आ रहे हैं।
2: बिल्कुल साथियों, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक खेती करके हमारे किसान साथी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, साथ में लागत को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और खास तौर पर सरकारें भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और हमारे किसान साथी, यदि आपको ज्यादा लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो केबीके झाबुआ में खुला हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी खुला हुआ है और कृषि विभाग भी वहां पर उपस्थित है, आत्मा भी वहां पर है। तो सभी विभागों में जाकर संपर्क करना होगा और साथ में हमें जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम तो बताते ही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय को हम किस तरीके से दुगनी कर सके। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और वहां पे अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती है उसका भी हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसान साथी, सबसे पहले हमारे किसानों से कहना है कि इस मौसम में, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में किसान भाई पहले अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लें, क्योंकि गहरी जुताई हमारे किसान साथी कर लेंगे तो हमारे किसान साथी जैसे ही पानी गिरेगा तो अपनी जो जायज की फसल है उसको बोकर अपनी दूसरी फसल भी हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और साथ साथ में अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण के साथ साथ हमारे किसान साथी बागवानी भी इस मौसम में कर सकते हैं और साथ साथ में अपने पेड़ पौधे भी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं गर्मी के मौसम में। हमारे किसान साथी अपने छोटे छोटे बागवानी लगाकर, किचन गार्डन लगाकर अपने पर्यावरण को भी वो बचा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती करके अपनी आय को बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक खेती की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि लागत कम लगती है इसमें और उत्पादन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उत्पादन हमारे पिछली फसल से कम हुआ है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारें इसके लिए अधिक प्रयास कर रही हैं, केबीके इसमें प्रयास कर रही है। उन्नतशील जो बीज रहते हैं उनका भी चयन आपको करना चाहिए, साथ साथ में कम पानी वाली फसलें, क्योंकि झाबुआ की अगर बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो हमारे किसान साथी किस तरीके से, पथरीला इलाका है, किसान साथी किस तरीके से उस जमीन में कौन सी प्रजाति के अपने बीज लगा सकते हैं, बो सकते हैं, और जिसमें पानी भी कम लगे और लागत भी कम लगे और उत्पादन अच्छा खासा हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों को बेहद जरूरी है। साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम में 3 सिगमेंटों पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला होगा कि आपको पता है कि प्राकृतिक

0: खेती क्या है, इसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी कुछ बताएंगे। साथ साथ में प्राकृतिक खेती के साथ साथ में पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से देख रेख इस बरसा वो क्या नाम गर्मी के मौसम में कर सकते हैं। साथ में एक सफल किसान की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं, बाहर के स्टेट का सफल किसान हो लेकिन उनकी कहानी को सुनकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, और उस बदलाव से चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि आय किस तरीके से दुगुनी हो रहा है किसान साथियों की, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो रहते हैं, जैसे कि हम इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे जो किसान एक उन्नतशील किसान है जिन्होंने चावल की अच्छी प्रजाति का उत्पादन करके पैकिंग कर उसको बाजार में बेचा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है प्राकृतिक खेती। इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી બાતી.
1: बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की, तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके. बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि. जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं. साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी. तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती के सारी में.
2: ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो. ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं. कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है, जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है. लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है. एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना. इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में, मिट्टी के सूखकर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है. एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है. इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए. रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं. देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है. भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है.
3: विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है. मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की. राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना. देश के एक बड़ा भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में, मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है. फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है. नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है. कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम. एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी, भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगन प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं।
2: इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए।
3: हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूं कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करे और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करे। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है।
2: प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए।
4: भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष अंक का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेष अंक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफी मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफी प्रभावशाली रहेगा।
5: अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के करकमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मित हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्योहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
7: फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील आपरो रेडियो आपड़ी बातें।
8: और साथियों, अभी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना और इस जानकारी सिर्फ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के माध्यम से आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसका सहयोग विशेष तौर पर KBK झाबुआ द्वारा किया जा रहा है और साथ साथ में कृषि विभाग द्वारा इसका सहयोग इसमें किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुधन, और इसमें आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासतौर पर गर्मियों में किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, पशुपालन को लेकर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आइए सुनते हैं इस प्यारे से रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
7: और आपके आरजे वर्षा के साथ में सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
9: पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजना के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है, तो उसमें ये दिया जाता है कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, एसएचजी से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीजें हैं अगर इन इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं।
2: साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है।
9: मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं।
2: इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर।
2: अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
8: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में पशु धन पर चर्चा को सुना और साथ साथ में जाना किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी अपने पशुपालन का ध्यान कर सकते हैं, यानी पशुओं का ध्यान कर सकते हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। खासतौर पर पशु से जो हमें दूध मिलता है, छाछ मिलता है, मट्ठा हम खाते हैं, साथ साथ में जो गोबर से हम लोग खाद बनाते हैं वो हमारे खेती के लिए अमृत होता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो पशु धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा योगदान पशु धन का रहता है। खासतौर पर देखा जाता है जब हम गर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें गोबर की खाद का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो गोबर के खाद से हम अपने खेती में फिर से अब बदलाव कर सकते हैं और फिर से जो हम रासायनिक खेती करते चले आ रहे थे अब उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसमें सफल किसान की कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं।
7: जी हाँ, इससे पहले हम सुन लेते हैं एक गीत को, क्योंकि देखिए बातचीत हमारी और आपकी यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला कार्यक्रम का यूं ही चलता रहेगा आपके साथ में, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ में। तो आइए यहाँ पर सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत। सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: 92.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है. हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं. युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं. आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं. आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर.
2: कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं. लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है. ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है. उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू. भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है. किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी. अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं. आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं. ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं.
0: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और कहने का मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो मनीष जी आपके साथ साझा करने वाले हैं. क्योंकि अभी हमने 3 सेगमेंट में कार्यक्रम को सुना है, यानी कि पहले हमने जाना कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है और क्यों हमें ये करनी चाहिए, इससे हमारे प्रकृति पर कितना असर पड़ सकता है ये भी हमने जाना है. दूसरा हमारा सेगमेंट था पशुपालन, क्योंकि हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस गर्मी के मौसम में हमें अपने पशुओं का ध्यान किस तरीके से हम रख सकते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं. अगला यानी कि तीसरा और आखिरी हमारा सेगमेंट था सफल कहानी. श्रोताओं, सफल कहानी कहीं की भी हो, किसी भी जगह की हो, बस जरूरत है उस कहानी को सुनने के बाद कुछ चीजें सीखने की, कि जिस तरह से वो किसान सफल हुआ है उस तरह से आप अपने क्षेत्र में भी काम करके, मेहनत करके, लगन से खेतीबाड़ी करके एक सफल किसान बन सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि मनीष जी हमारे साथ क्या साझा करने वाले हैं.
3: हम अपने किसान साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है. ऐसे में हमारे किसान साथी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे. और हमारे किसान साथी अभी जो खाली खेत पड़े हुए हैं उसमें ग्रीष्मकालीन जो मूंग रहती है उसका भी हमारे किसान साथी बोनी कर सकते हैं. अच्छा समय है. साथ साथ में अगर बागवानी की बात करें तो विशेष तौर पर सरकार है इसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले की बात की जाए तो झाबुआ जिले में उबड़ खाबड़ जमीन है, साथ साथ में पथरीला इलाका है, पानी रुकता नहीं है. तो ऐसे में क्या करें किसान, क्योंकि किसानों को जागरूक होने की अब आवश्यकता है. कृषि विभाग की ओर से जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम्स हो या पाइप वाली स्कीम्स हो या फिर टपक पद्धति वाली स्कीम्स हो, यानी उनको किस तरीके से एक पौधे में किस तरीके से पानी लगाया जाता है, वो सारी जानकारी या स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जाती है, तो उसके लिए आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारे किसान साथी KVK है, यानी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग भी है, साथ साथ में आत्मा का भी ऑफिस बना हुआ है, वहां पर जाकर संपर्क करना चाहिए और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को अभी से बीजों का चयन करना चाहिए कि कौन सी प्रजाति का बीज हमें अपने खेतों में लगाना है, कैसे लगाना है, कैसी पद्धति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहां पर चलता नहीं है। ऐसे में किसान साथी जिनके पास ज्यादा जमीन है वहां पर ट्रैक्टर चलाया जाता है और जहां पर पथरीला इलाका है वहां पर हल से हमारे किसान साथी खेती करते हैं। तो विशेष तौर पर हमारे किसान साथियों को सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसे में हमारे किसान साथी तालाब का बहुत ज्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, जगह जगह तालाब गहरीकरण हो रहा है, जहां पर तालाब संरक्षण की अगर बात करें, तालाबों को बचाने की अगर बात करें तो वहां पर सरकार प्रयास कर रही है, तालाब गहरीकरण करवाया जा रहा है, खुदवाए जा रहे हैं नए तालाब, चेकडैम बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे में किसान साथी जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पर समतलीकरण करा लें और साथ साथ में तालाब भी अगर जहां अगर आपके संरक्षित नहीं है वहां पर तालाब की अच्छी व्यवस्था कर लें, जिससे बरसात का जो पानी रहता है वो रुक सके और आपकी जो फसलों में नमी बनी रहती है उस वजह से आपको नमी बनी रहेगी और आपकी उत्पादन हमारे किसान साथियों की अधिक होगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी इस जानकारी का सही इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन आपके पास और कमी है जानकारी की, तो आप हमारे रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, यानी रेडियो टांडिया भील से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा
3: 94251436303। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
0: तो साथियों अब हमारा यानी कि इस कार्यक्रम का समय होता है जाने का, क्योंकि अगले कार्यक्रम में यानी कि फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नई और जानकारी के साथ। तो ऐसे ही सुनते रहे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
3: अपना रेडियो अपनी बात है। तो आपके आरजे मनीष
0: और आपके आरजे वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। देखता है तुम भी सपने बुनो ना। आइए दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टैलेंट के साथ, एक नई प्रतिभा के साथ, एक नई गायिका के साथ। इनका नाम है ऐशानी जी। बाकी हम ऐशानी जी से पूछेंगे। मैं चाहता हूं आप ऐशानी जी की बहुत ही मधुर आवाज में उनका इंट्रोडक्शन सुने। ऐशानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। प्लीज,
1: थैंक यू सो मच समीर जी।
0: स्टेज इज फॉर यू नाउ। अपना परिचय दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। आप कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं?
1: जी, सो यस, मेरा नाम ऐशानी है एंड सभी को मेरा नमस्कार। सो मैं बड़ौदा से हूँ और बेसिकली मैं हूँ एक म्यूजिशियन, सिंगर आई कैन से, जो लोगों का दिल बहलाते हैं गाने से और उनको सुकून देते हैं।
0: बहुत खूब दोस्तों, आपने सुन लिया, इनकी आवाज की खनक आपने सुन ली। बहुत ही छोटा सा इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया बट बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच मैम। चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम को इस गीत से।

0: बहुत बहुत सुंदर गाएगी। ऐशानी जी आगे बढ़ते हैं और आपकी पूरी शख्सियत को समझने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, आपको समझने के लिए बचपन में चलते हैं। बचपन की सभी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए ना।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली आपने। बहुत टाइम हो गया बचपन को याद किए हुए या बचपन की बातें किए हुए। तो मेरे लिए सबसे प्यारा सा अगर कोई मेमोरी है जो मुझे याद हो तो वो मेरे पापा के साथ है। मतलब जब मैं हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो जब भी मैं रोती तो पापा म्यूजिक बजाते। मेरे पापा बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते, इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, सो बहुत प्यार से म्यूजिक बजाते थे। तो मेरा रोना बंद हो जाता था। अगर मैं कभी गलती कर दूं तो मेरे पापा मुझे डांटते नहीं थे, वो मुझे बहुत प्यार से समझाते थे और साथ ही साथ वो मुझे आइसक्रीम खाने लेके जाते एंड देन फिर से रात को आके हम रोज रात को पुराने गाने सुनते। तो ये जो मूवमेंट था कि पुराने गाने सुनने का, उनके साथ बैठने का, और बचपन उनके साथ ही बिताया है मैंने। सो यस, ये मेरी सबसे स्वीट मेमोरी है कि जो हमेशा मुझे याद रहेगी। अगर मैं सोचूं कि बचपन होना तो फिर बस यही होना।
0: वेरी क्यूट ऐशानी जी। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आप अपने पिताजी के साथ पुराने गाने सुना करती थी तो उस जमाने में आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन थे?
1: गीता दत्त जी।
0: वाओ, दैट इज,
1: बहुत ही सुंदर गाते थे। जब वो गाते थे ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनके जितना भी अगर मैं कभी गाऊं ना तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगी।
0: बहुत खूब। मैं माफी चाहता हूं ऐशानी जी, मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गीता दत्त जी का गाया हुआ कोई गाना जरा सा एक मुखड़ा गुनगुना दीजिए ना।
1: ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। ये एक बिल्कुल नया रंग है दोस्तों हमारे आज के कलाकार के प्रोग्राम का। बहुत खूब ऐशानी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ही की आवाज में सुनते हैं एक ये वाला गीत।

0: सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी। ऐशानी जी, जिंदगी है, चलती है, उठा पटक होती है, हम गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, दौड़ते भी हैं, लेकिन असफलताएं, फेलियर्स हमको रोकने की कोशिश करती हैं और हम हमेशा जीतते हैं। बड़ी मजेदार बात है। तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी फेलियर या असफलता आपको याद है क्या रही और आपने उससे क्या सीखा?
1: जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर मैं बहुत ज्यादा फेलियर फील किया है, एंड देन आई कम बैक एज अ गुड आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। सो सबसे सबसे खास ये है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाना स्टार्ट किया तो नवरात्रि ली थी मैंने। हम गुजरातीज में यू नो नवरात्रि इज द बेस्ट थिंग जो हमेशा हर किसी को भाती है, रिझाती है, भगवान मतलब हम देवी की आराधना करते हैं। सो उस टाइम पे मुझे कॉन्सर्ट मिला 10 डेज का, बट द थिंग इज मेरा वॉइस उस टाइम पे वर्क ही नहीं किया। मे बी रियाज कम पड़ा हो या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये चीज हुई हो। सो उस साल मैं गा ही नहीं पाई, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, बिकॉज 1000 पब्लिक सुन रही थी और आप गा नहीं पा रहे थे। बट देन मैंने उस पर रिसर्च किया, रियाज किया, पापा के साथ बैठी, दूसरे सारे रिसर्च किए, फाल्गुनी पाठक को सुना, इवन अतुल पुरोहित, मतलब जितने भी अच्छे गरबा सिंगर्स है सबको सुना समझा, एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर आई केम बैक विद द बैंग एंड आई गेव 10 डेज हिट शो।
0: वाओ,
1: एंड टिल देट सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप यही गाइए।
0: That is so amazing. That is so amazing. दोस्तों आपने सुना, और मैं पर्सनली ऐशानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गरबा के दौरान जितने भी गाने गाए जाते हैं, जितना भी भजन होते हैं, या मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं, हाँ सुने बहुत हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसा वक्त आएगा तो हम उनके लिए एक और प्रोग्राम बनाएंगे और ऐशानी जी हमारे लिए वो गीत भी सुनाएंगी।
1: जी बिल्कुल, गुजराती गरबे एक खुद ही में एक कला है, खुद ही में एक पूजा आराधना है देवी की। सो मैं डेफिनेटली आपके साथ ये शो करूंगी।
0: थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला गीत सुनते हैं ऐशानी जी का गाया हुआ।

0: बहुत सुंदर ऐशानी जी, असफलता की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रशंसा की। वैसे आपने पिछले सवाल के जवाब में बता भी दिया कि लोगों ने कहा कि आप लगातार वही गीत सुनाते रहे और 10 दिन तक आप वही गीत गाते रहे, फिर भी उसके अलावा अपनी जिंदगी में मिली हुई और कोई बहुत अच्छी एप्रिसिएशन या प्रशंसा मिली हो आपको, उसके बारे में बताइए।
1: जी, मैं अपने गुरुजी को बहुत मानती हूँ। हमारे गुरुजी जो है मेरे, वो हमें जब सिखाते हैं तो एक ही राग को हम 6 महीने 7 महीने गाते हैं कॉन्स्टेंट जब वो सिखाते हैं। तो उनसे सुनना कि आपने अच्छा गाया, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी ने बोला नहीं, आपने अच्छा गाया। गुरुजी के बाद मैं सबसे ज्यादा अपने फादर को एडमायर करती हूँ। सो जब उन्होंने बोला कि नहीं, आप अप टू द मार्क है, दैट इज द अप्रेजल फॉर मी, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस था। एंड उसके बाद मैंने कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो दिस इज वेयर आई कैन से कि ये सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन है मेरे लिए, टू गेट टू डू वर्क हार्ड एंड टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
0: अमेजिंग, बहुत बढ़िया दोस्तों, इससे बढ़िया एप्रिसिएशन और क्या होगी। अगर कोई आपके गुरुजी, आपके टीचर एक बार भी हल्का सा इशारा भी कर दें कि आपने अच्छा किया है, तो वो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खूबसूरत सा गीत हो जाए फिर ऐशानी जी की ही आवाज में।

0: ऐशानी जी, मुझे लग रहा है जो सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूं मेरे दिमाग में आ रहा है उसका जवाब। कुछ कुछ तो आपने बोल दिया, बट आने दीजिए उस जवाब को। मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए, और बताइए कि उन्होंने आपकी जिंदगी पर किस तरह से प्रभाव डाला।
1: मैं सबसे पहले, एज आई टोल्ड, माई फादर इज माई रोल मॉडल, सो पहले वही आएंगे। वो सबसे पहले मेरे रोल मॉडल इसलिए हैं बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो पूरे दिन म्यूजिक करते हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी वही करती हूँ। सो उसी की वजह से ये मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। सेकेंडरी जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज सोनू निगम, आप सब जानते हैं उन्हें। तो उनकी जो वर्सेटाइल सिंगिंग है, तो मैं उस पर बहुत रिसर्च करती। ही इज लाइक माई आइडल, कि भाई उनके जितना नहीं पर उतना भी गा सकूं तो बहुत है। और सबसे ज्यादा मुझे किसी ने इंस्पायर्ड किया है तो दैट इज माई मॉम। वो दिन नहीं देखती, वो रात नहीं देखती, शी वर्क्स शी वर्क्स शी वर्क्स। एंड उससे मैंने ये सीखा कि व्हेन यू विल ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, देन यू विल सक्सीड। किसी भी हाल में कभी भी हताश नहीं होना है, ना ही घबराना है। तो ये तीन लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में कि आई कैन से कि हाँ, जो है ये है तो मैं हूं।
0: बहुत सुंदर, बड़ी बढ़िया बात। तीन ऐसे प्रभावशाली लोग ऐशानी जी की जिंदगी में जिन्होंने उनको निखारा, उनकी पर्सनालिटी को अच्छा किया, डेवलप किया, और वो आज एक बहुत ही प्यारी सिंगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा एक गीत सुनते हैं ऐशानी जी की ही आवाज में।

0: ऐशानी जी, एक सवाल दिमाग में आ रहा है। आपने जब सबसे पहली बार कोई गाना गाया, याद कीजिए सबसे पहली बार, जब जितनी भी उम्र में आप रही हो, तो कौन सी गायिका थी जिनका गाना आपने गाया था?
1: जी, मैंने श्रेया घोषाल जी का गाना गाया था और उनका वो गाना बहुत ही सुंदर है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है और तब अराउंड मैं हो गई 6-7 साल की, तब मैंने पहली बार गाया था। सो तब से मैंने रियाज भी स्टार्ट किया, लेकिन मैंने पहली बार अगर कोई गाना गाया तो वो गाया, बिकॉज वो गाना मेरे दिल को छू गया। वो उनके शब्द, उनके बोल, उनकी सादगी, ये सारी चीजें बहुत सुंदर थी। सो पहला गाना मैंने उनका गाया था।
0: बहुत खूब। कुछ याद है कौन सा गाना था वो?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह, कौन सा था बताइए ना।
1: चलो तुमको लेकर चले।
0: ओह ऑलराइट, दैट्स सो क्यूट, बहुत ही प्यारा गीत। दोस्तों आपने सुना, ऐशानी साहब मैम को याद है कौन सा गाना उन्होंने श्रेया घोषाल जी का गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा गीत सुनते हैं उन्हीं की आवाज में।

0: ऐशानी जी, क्या आपको कभी स्टूडियो रिकॉर्डिंग का अनुभव हुआ है? कभी आपने स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग की है?
1: जी बिल्कुल किए है।
0: तो कैसा अनुभव था वो? क्या महसूस किया जब आप पहली बार स्टूडियो में गई? कैसा महसूस किया आपने?
1: देखिए, किसी भी चीज को जब हम पहली बार करते हैं तो हमेशा डर रहता है। तो मुझे भी जब पहली बार स्टूडियो में गई तो मैं बहुत डर गई थी कि अगर अच्छा नहीं गाया तो लोग क्या कहेंगे, ये वो। लेकिन फिर अगेन आई मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि अगर तुम खराब भी गाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाना जरूरी है। तुम एक बार स्टार्ट करोगे तो तुम कंफर्टेबल होगे तो तुम गा ही लोगे। सो वो जो सराउंडिंग होता है वहां पे आपके आजू बाजू कोई नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि सब देख रहे हैं पर कोई नहीं सुनता, तो वो एक साउंड प्रूफ एरिया होता है जहाँ पे आपको गाना होता है। तो बस आंखें बंद करती हूँ और गाती हूँ, सो वो मेमोरेबल मोमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने मूड में अपना आवाज खुल के गा सकते हो। सो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है।
0: बहुत बढ़िया ऐशानी जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी न कभी स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग का अनुभव ले चुके होंगे, तो वो आपके साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। कई लोग होंगे जिनको अभी तक स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, आपके लिए ऐशानी जी बता रही हैं कि जब स्टूडियो में जाते हैं ना, तो पहले हल्का फुल्का सा डर और उसके बाद जो मजा आता है वो अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐशानी जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत सुंदर। ऐशानी जी, आप गरबा करते हैं, आप स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन सा सवाल, आप अकेले गाना ज्यादा पसंद करते हैं या ग्रुप में?
1: देखिए, डिपेंड करता है कि गाना कौन सा है। हम ग्रुप में भी गाते हैं, साथ अकेले भी गाते हैं। अगर कोई ऐसे गाने हैं कि जिसमें ग्रुप की जरूरत नहीं है, ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि कोरस सिंगर होता है, मतलब एक गाता है और बाकी सब सुर लगाते हैं। जहां वो गाने की जरूरत है वहां है, जहां नहीं है वहां नहीं है। सो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि सबके साथ या अकेले। जो सॉन्ग की जैसी डिमांड होती है हम वैसे करते हैं।
0: नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है ना ऐशानी जी, मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए,
1: जी बिल्कुल,
0: कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी इंडिविजुअल को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल को ऐसा लग सकता है कि गायक तो मैं हूँ, गायिका तो मैं हूँ, मैं गाऊंगा, ग्रुप में मेरी आवाज खो जाएगी। तो कई बार लोग चुपके चुपके ये मान बैठते होंगे कि साहब मेरे को तो सोलो ही गाना है, ग्रुप में नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये चीज पूछी।
1: जी, इसका मैं बहुत अच्छा आपको उत्तर देती हूँ
0: जी,
1: कि जब आप ग्रुप में गाते हैं तो आपका वॉइस हर किसी के साथ मैच होता है। आप सिंगल गाते हैं तो सिर्फ आपका वॉइस आपको सुनाई देता है। अगर आपको आपको पता हो तो जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना सिंगिंग की या किसी चीज की, तो हम ग्रुप में लेते हैं। गुरु कभी किसी एक को नहीं सिखाते, सबको सिखाते हैं, सब साथ में गाते हैं, साथ में रिपीट करते हैं, तो सबको याद रहता है। अब आप एक अच्छा सा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ग्रुप स्टडीज करते हैं और अकेले स्टडीज करते हैं, डिफरेंस रहता है ना?
0: बिल्कुल।
1: ग्रुप स्टडीज में दोस्त होते हैं तो आप उनसे बात करते हैं, वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, आप आंसर देते हैं। अब अगर आप अकेले स्टडी करेंगे तो आप कैसे आंसर दे पाएंगे? खुद ही याद करेंगे, खुद ही भूल जाएंगे।
0: करेक्ट, बड़ी बढ़िया बात कही आपने
1: जी। सो म्यूजिक भी यही है कि आप अगर सबके साथ म्यूजिक में, देखिए अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो चाहिए, तबला चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, गिटार चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो आप कैसे गाएंगे?
0: सोलो
1: भी गाना चाहिए और ग्रुप भी गाना चाहिए। अगर ग्रुप में कभी ऐसा होता है कि आप कहीं गलत हो जाते हो तो आप ग्रुप में ढक जाते हो। अगर आप सिंगल गाओगे और कहीं गलत हो गए
0: तो सामने पका आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्या बात कही दोस्तों आपने, सुना। वैसे भी हम लोग इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं, तो ग्रुप में गाने का मजा कुछ और ही होता है। चलिए तब तक तो एक सोलो सॉन्ग ही हम सुनते हैं ऐशानी जी का।

0: बहुत बढ़िया। शानी जी, एक मजेदार सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको थोड़ा सा शायद परेशान भी कर दे, जैसे आप होंगी नहीं। आपने कभी बिना माइक के भीड़ के सामने गाया है?
1: बहुत बार।
0: अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। कब? एक बार के बारे में बताइए।
1: ये ही तो जिंदगी का सबसे पहला स्टेप होता है। आप कभी किसी के सामने गाते हो तो पहली बार जब आप गाते हो तो आप माइक में कभी नहीं गाओगे। ये हर किसी के साथ होता है क्योंकि वो डर रहता है कि आवाज अगर खराब हो गई तो। इसलिए बिना माइक के गाना बहुत बार होता है। अब जैसे हम महफिल में बैठे हैं दोस्तों के साथ, या तो कोई रिश्तेदार आ गए, या तो कोई ग्रुप है 50-60 जिनका जो बैठा है और बोल रहा है कि चलो कुछ गा दो, तो तब तो हम माइक नहीं यूज कर सकते ना, तो तब बिना माइक के गाते हैं। और मुझे पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पे बिना माइक के गाना बहुत सुकून देता है। जैसे कि आप अगर मंदिर में कहीं चले जाओ भजन कीर्तन में, उन लोगों के पास अभी अभी माइक स्टार्ट हुए, अदरवाइज पहले माइक नहीं होते थे, पर वो उतना सुंदर गाते थे कि आप उन्हें अच्छे से सुन पाते थे। सो यस, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि माइक के बिना गाना बहुत बार होता है। कभी ऐसा भी होता है कि बिना माइक के हमें कहीं भी गाना पड़ता है। अगर हम कोई है, चलो हम किसी से मिलने गए, उन्होंने बोला कि आप कुछ सुना दीजिए, तो अब हम तब तो माइक नहीं लेंगे ना, हम सुना ही देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आपने सुना, और ऐसा आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आपको फरमाइश की गई कि थोड़ा सा सुना दीजिए ना, कुछ गा के सुना दीजिए ना, क्योंकि लोग जानते हैं आप अच्छा गाते हो। उस वक्त कोई माइक नहीं होता, भीड़ होती है और मजा आ जाता है बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐशानी जी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: ऐशानी जी, फर्ज कीजिए आपको दुनिया भर में कहीं पर भी, जहां आप चूज करें, कोई जगह चूज कीजिए जहां पर आपको परफॉर्म करने का मौका मिले, मतलब कहीं स्टेज पर आपको गाना गाने का मौका मिले, पूरी दुनिया खुली है, ओपन है, तो कौन सी जगह पर आप परफॉर्म करना चाहेंगे?
1: कठिन सवाल है क्योंकि
0: जी
1: जगह तो बहुत सारी हैं, बट मैं अगर पसंद करूंगी तो यस, मैं बड़ौदा में ही गाना पसंद करूंगी।
0: ओ, क्या बात है, क्या
1: यस,
0: बात है, ये तो आप,
1: क्योंकि
0: जी जी
1: नहीं,
0: बोलिए।
1: आप बताइए। क्योंकि
0: नहीं, आप बोलिए।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम हमारी मिट्टी से और जहां से हम सीखे हैं, जो हमारे रूट्स हैं, अगर हम वहां पे भी परफॉर्म करें तो हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि आप अपने शहर में सबको जानते हो, आप सबके साथ सेटल हो, सब आपको जानते हैं, तो जब आप गाओगे तो लोग वही सुनेंगे। नई जगह पे जाके गाना ठीक है, बहुत अच्छा है, पर अगर मुझे पर्सनली पूछे तो मैं प्रिफर करूंगी कि मैं बड़ोड़ा में ही गाऊं और उन लोगों के साथ गाऊं जिनसे मैंने सीखा है, तो वो भी सुने और उन्हें उन्हें गर्व हो कि नहीं, हमारी बच्ची आज कहीं है। तो इसका अगर आंसर है तो यही है कि बस बड़ोदा में ही गाना है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। आपके लोगों की जगह पर, आपके लोगों के लिए, जिन्होंने आपको सिखाया उन्हीं के बीच में, बड़ी खूबसूरत बात कही। तो चलिए दोस्तों, ऐशानी मैम की ही आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत संगीत।

0: ऐशानी जी, आज जो आपने फैंस बनाए श्रोता, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश है उनके लिए आपका?
1: जी, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश रहिए और आपके साथ जो है उन्हें भी खुश रखिए, क्योंकि साथ के खुश रहते हैं तो हम खुश रहते हैं और हम खुश रहते हैं तो जिंदगी क्या बात है। सो खुश रहिए।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही चुलबुला सा, बड़ा ही प्यारा सा, क्यूट सा मैसेज सभी के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्या बात है। ऐशानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे अलग तरीके से बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई, आपके बहुत सुंदर गीत हमने सुने, आपका बहुत बहुत आभार। हम इंतजार करेंगे गरबे के गीतों का। थैंक यू सो मच।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच समीर जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।
2: दिल ने तुमको चुन लिया है।
3: तो दोस्तों, हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए, फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है, समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ। हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रही और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: अर्चना जी। शुरुआत आपके बचपन से करते हैं क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्रकला में रुचि थी?
1: हाँ जी, बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी, मूर्तियां बनाते थे हम लोग, और मेरे पास संगीत भी था, मैं संगीत भी सीखती थी, नृत्य भी सीखती थी। तो सारी कलाओं से ही मैं जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। और मैंने साइंस नहीं लिया, कला ही ली, कला को ही चुना अपना विषय, इसलिए कि मेरा इसमें बहुत ज्यादा बचपन से इंटरेस्ट था। कविताएं भी करती थी मैं।
0: अरे वाह, तो आप तो पूर्ण रूपेण एक तरह से कला के लिए समर्पित थी, बहुत ही अच्छा लगा जान के। आपकी शिक्षा और ड्राइंग पेंटिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: एक्चुअली मैंने कभी ये प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर से मिली। वही कहते थे तुम बिना पढ़े लिखे ही इतने अच्छे नंबर लाती है, टॉप करती है साइंस आर्ट्स दोनों फैकल्टीज में, तो पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो वो एक प्रेरणा भी थी और मेरी आवश्यकता भी थी। तो मैंने खूब मेहनत करी और स्वर्ण पदक मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था हमें, क्योंकि यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में था ही नहीं।
0: और पीएचडी के लिए आपने किस विषय पर शोध किया और उस विषय का चुनाव कैसे किया?
1: मैं जब भी सफर करती थी तो मुझे यहाँ की हवेलियों पे, मंदिरों में, बावड़ियों में, हर जगह पे भित्ति पे चित्र दिखाई देते थे और वो मेरे साथ साथ दौड़ते रहते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि इतना काम यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली 16वीं शताब्दी से चित्र बन रहे हैं भित्तियों पर, और उसका जो इतिहास है वो आज तक किसी ने अभी ऐसा लिखा नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं इसी के ऊपर शोध करूं, और दूसरी उसका ऐतिहासिक महत्व। मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट का टाइटल था वो राजस्थान के भित्ति चित्र और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बाद में विषय खुला और मेरे को कोई गाइड नहीं मिले, तो मैंने इतिहास के ही एक विद्वान जो कि टॉप 10 में आते हैं इंडिया के, उनसे उनको अपना गाइड बनाया और वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उस पर काम कर पाई उनके साथ में।

0: ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही जोरदार बात है। और राजस्थान में तो जगह जगह भित्ति चित्र
1: जगह
0: हर
1: जगह,
0: जगह है, यहाँ जगह जगह। और
1: बिल्कुल
0: बावड़ियों का
1: बिल्कुल,
0: आपने जिक्र किया, बावड़ी
1: हाँ जी हाँ
0: भी
1: जी,
0: राजस्थान में बहुत है क्योंकि यहाँ पानी की कमी
1: बहुत
0: रहती है।
1: बिल्कुल,
0: एक यहाँ
1: आपको
0: चांद
1: हर
0: बावड़ी
1: जगह
0: है,
1: चित्र मिलेंगे यहाँ पे। हाँ
0: बिल्कुल एक चांद बावड़ी है, वो भी मैंने भी देखी है, बड़ी जोरदार है, कहते हैं
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत फेमस है। अब थोड़ी सी आपके शिक्षण की तरफ अपन रुख करते हैं। आपने
1: जी,
0: लंबे समय तक राजस्थान के कई कॉलेजों में ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का नेतृत्व किया, इस सफर में
1: देखिए
0: कौन कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं?
1: एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो उसको, उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई पढ़ाई और शिक्षा को वो ग्रहण करें तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए, तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है एज ए
0: बहुत बढ़िया,
1: टीचर, एज ए लेक्चरर।
0: जी जी बिल्कुल। शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके जो
1: विद्यार्थी उनको
0: विद्यार्थी
1: याद
0: है वो
1: करें।
0: बिल्कुल याद करें, बिल्कुल। एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन-किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए।
1: चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य के पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं वहाँ के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है वो जो वो होते हैं पियोन्स वगैरह सबका, मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना, और वो भी ऐसे इस कॉलेज में जहाँ 8,000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल चाकू छुरे सब तरीके से साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो दो जो नेता बनते हैं वो वहीं से ही शुरुआत होती है, तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरा